अकबर जी मैं बच्चों आगे बताओ तुम्हें क्या दृष्टवांग भाग भगवान आगे बताओ तुम अग्नि को अनांग एमो अंग तिग मो कैसी पर ओ गिकन दाव कंग किंग किंग सबूह अनु किंग किंग मना आयो तरी तारिक जाता तरी दा दूल न सुता दा आयो तरी इमो किंग किंग दापुई मंगा गफ्फर मेगल